0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808011978।
2: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
3: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
2: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
3: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
2: बॉक्स पलंग, 3 पीस आ 2 पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
2: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खराज कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगाएत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
2: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
2: 9847004070 आ 9862860270।

0: नवरत्न कूल ओइलको 2 मिनेटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कूल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कूल ओइल, चिसो चिसो कूल कूल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
1: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ। बर्जर पेन्स

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: एखन भोरकवा एफएम में भोर के 6 बाजल।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताहि प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीब वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लो जाओ।
1: दोसरो के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: ये दीदी, देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
4: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा, अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
5: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा, टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD।
6: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
5: सेवा आ सुविधा सब,
6: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
4: गर्भवती महिला जांच,
6: स्त्री रोग,
4: लिकोरिया,
6: महीनावारी गड़बड़ी,
4: पीठ
6: आ डाँर दुखेनाई,
4: पेशाब जलन,
6: मांस बढ़नाई,
4: निसंतान दंपति के परीक्षण,
6: IUI सेवा,
4: वीडियो एक्सरे,
5: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध,
4: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
5: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब, छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड,
4: मोबाइल
5: 9861779 आ 9817189133।
7: कतेक दर्द करे छे, ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
8: की भ गेला से?
7: ओ बुआ, नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे।
9: आप चिंता नहीं करो, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
8: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
10: एरो आ हमारे डाँड का नस बड़ दुखाई या बारे, ठीक भ जाते ना?
8: पूरे ठीक भ जाते।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
11: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कयल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
11: मोबाइल 9847996749 आ 9817306096।
12: आब अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम चौबीसो घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: এখন ভড়কওয়া এফএম ভোরকে সাত বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: हे कनिया, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कत बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। ओतः आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राज विराज सात मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9897404545।
5: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: extreme energy drink.
1: अपने साथ दूर रहती बोरकुमा एप

0: कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचो सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: अहाँको गहना बडा सुन्दर या डिजाइनो नया कता बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राजविराज में बनेलिए। ओत आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छे।
4: काव्या ज्वेलर्स राजविराज सात मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोपराइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह मोबाइल 98-97-40-445।
5: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
6: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
5: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कैल जाए
6: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
6: 031-530-7076
2: मोबाइल
6: 98015-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
7: एकटा खुशी के खबर छौ।
8: कथु छौ?
7: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राजविराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़त।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन।
6: एहिठाम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग
3: विदेश जवाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा मेडिकल जांच कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
6: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
6: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स चतुर्भुज मार्केट मेन रोड लोहार गली राजविराज 4 सप्तरी।
3: फोन
6: 031-532-575
3: मोबाइल
6: 98015-02

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: भौजी बहुत टेंशन में छे की भ गेल
1: की हेते देखू ना केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलके जे नोट कसते कसते सब टूट गेल
0: सुनू जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे
1: ओतो की सब तैयार करे छे यो
0: बॉक्स पलंग थ्री पीस आ टू पीस दराज सोफा सेट डाइनिंग टेबल कुर्सी अलना ड्रेसिंग टेबल बाघ पंजा सोफा सेट
2: जी हाँ शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे
0: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जात संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे पलाई फोर्मिका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध
2: प्रोपराइटर शंभु सुथियार
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स राजविराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में
2: मोबाइल
0: 9847040070 आ 9628866270
3: फिरता 20% समकेस फिरता सहीले पानी चाहा पानी
4: कैश फिरता लिनु भए त
5: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नवरत्नको रोयलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओयल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं करा, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में।
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै।
4: एरो आ हमर डाढ़ का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 98।

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800 11978।
2: फिरता 20%
3: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: बर्जर पेंस।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए त स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन भोरकवा FM भोर के 8 बजल।

0: नमस्कार। नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रमकै प्रतीक्षामै रहल समस्त श्रोतामै हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करै छी। हम प्राविधिक सुबेदार अजिता घिमिरे। नेपाली सेनाद्वारा उत्पादित यी कार्यक्रम अपने लोकन रेडियो नेपाल सहित देशभरकै 212 एफएम रेडियो सबसे सुनैत आइ रहल छी। त नेपाली सेनाको वेबसाइट nepalarmy.mil.np मे सेहो सुन सकै छी। श्रोता, आजकै कार्यक्रममे हम सब नेपाली सैनिक गतिविधि के संगमे नेपाली सेना भोटे कोशी बाइट्स क्षति भेल सड़क सञ्जाल सञ्चालन तथा बाइट्स प्रभावित नागरिक सबके लक्षित क स्थापना केने एक्रो ब्रिज तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी रेडियो सामग्री प्रस्तुत करब। कार्यक्रम के शुरुआत करी नेपाली सैनिक गतिविधि स।
1: नेपाली सैनिक गतिविधि प्राविधिक हुद्दा विद्यानन्द यादव सर सुनल जाओ। प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोक राज सिग्देल मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीन के बेजिङ में सञ्चालन होब लागल दी 13th बेजिङ स्याङ सान फोरम में सहभागी होबलेल भादो 28 गते चीन प्रस्थान भेल छायत ओ जनवादी गणतन्त्र चीन के औपचारिक निमन्त्रणा में चीन प्रस्थान केने छायत। प्रधान सेनापति उक्त फोरम में सहभागी भ आसिन 3 गते स्वदेश फिर्ता हेबाक कार्यक्रम रहल अछि। रसुवा के भोटेकोशी में भादो 10 गते आयल विनाशकारी बाइट पश्चात नेपाली सेना अग्रपंक्ति में रहकर खोज तथा उद्धार में सक्रिय रहल अछि। ओहि क्रम में विभिन्न सुरुंग में ब्लास्टिंग कर प्रवेश मार्ग बनाकर ड्रोन के सहायता से आ स्वयं प्रवेश कर फंस सकला व्यक्ति सबके खोज तथा उद्धार कैल जा रहल अछि। एकर संगे खोज तथा उद्धार में थर्मल इन्फ्रारेड ड्रोन मार्फत समेत स्कैनिंग कैल गेल छल। अहिना थर्मल प्रविधि जमीन भीतर के अवस्था देखाब नहीं सकबाक कारण से सुरक्षा फौज संयुक्त रूप में पैदल गस्ती समेत संचालन कर खोज तथा उद्धार केने छल। अहिना क नुआकोट स्थित विपद प्रतिकार्य टैक्टिकल हेडक्वार्टर अंतर्गत के फौज नुआकोट तथा रसुआ जिला के विभिन्न स्थान में बेस स्थापना कर खोज तथा उद्धार क रहल अछि। एहि क्रम में अर्ली वार्निंग सिस्टम के लेल विभिन्न स्थान में सिग्नल टोली तैनात कैल गेल अछि। बाइट प्रभावित सबके अत्यावश्यक पड़े वाला मेडिकल सामग्री खाद्य तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री सबक सहज व्यवस्थापन के लेल समेत नेपाली सेना हवाई तथा स्थल मार्ग से बाइट प्रभावित स्थान में राहत सामग्री ढुवानी कर रहल अछि। अहिना क नेपाली सेना हाल धरि प्रभावित क्षेत्र से 3874 स्वदेशी तथा 283 विदेशी कैर 4157 गोटे के हवाई उद्धार केने अछि। तहिना त्रिशुली आ धुन्से में स्थापना कैल गेल आपतकालीन उपचार केन्द्र तथा मेडिकल पेट्रोल से हाल धरि 3720 गोटे स्वास्थ्य सेवा प्राप्त केने छथि। विनाशकारी बाइट लगत्ते प्रभावित इलाका में खटल नेपाली सेना विभिन्न जलविद्युत आयोजना के सुरुंग में खोजी कार्य जारी राख्ने अछि। एहि क्रम में नेपाली सेना से खटल उद्धार टोली रसुआ स्थित रसुआगढ़ी जलविद्युत आयोजना, लांगटांग जलविद्युत आयोजना, सिलिमे जलविद्युत आयोजना, अपर त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजना आ नुआकोट स्थित त्रिशुली 3A आ त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजना के सुरुंग में परिचालित भक खोज तथा उद्धार केने अछि। एहि क्रम में रसुआ गढ़ी जलविद्युत आयोजना में कम्पोजिट क्विक रिएक्शन टीम तथा आयोजना के प्रतिनिधि सहित के संयुक्त खोज तथा उद्धार टोली पावर हाउस ट्रांसफर्मर रूम आ कंट्रोल प्वाइंट धेर पहुँच कर खोजी केने छल। तहिना लांगटांग हाइड्रो में नेपाली सेना 25 गोटे के टोली टनल भीतर खोजी केने अछि। त चिलिमे हाइड्रो में विदेशी सहित के संयुक्त टोली टनल भीतर के थाल माइट फेंकने अछि। तहिना क टनल भीतर हेवी इक्विपमेंट ल जेबाक लेल ब्लास्टिंग कर बाट निर्माण क रहल अछि। त सड़क के ट्रैक खोलल गेल अछि। नेपाली सेना नुआकोट जिला विदुर नगरपालिका 5 देवीघाट स्थित तादी नदी में एक्रो ब्रिज निर्माण केने अछि। उक्त ब्रिज के भादो 25 गते नुआकोट के प्रमुख जिला अधिकारी श्री शंभु प्रसाद रेग्मी उद्घाटन केने छथि। रसुआ के भोटेकोशी नदी में भादो 10 गते आयल बाढ़ नदी में रहल पुल बहेला के बाद नेपाली सेना उक्त ब्रिज निर्माण केने अछि। 57.9 मीटर लंबाई, 5.5 मीटर चौड़ाई आ 60 टन भार बहन क्षमता भेल उक्त एक्रो ब्रिज 5 दिन में जड़ान करबाक लक्ष्य सहित भादो 19 गते से जड़ान कार्य शुरू कर भादो 24 गते निर्माण संपन्न कैल गेल अछि। धादिंग के गजूरी में नेपाली सेना लग स्टॉक रहल एक्रो ब्रिज उक्त स्थान में जड़ान के लेल ब्रिजिंग यूनिट के प्रमुख सेनानी श्री करुण बहादुर थापा के कमांड में फौज खटल छल। एकर संगे अन्य बाढ़ प्रभावित स्थान में नेपाली सेनाक इंजीनियर इन्जिनियरिङ टोली पुल निर्माण आ सडक सुचारू कर सहयोग हवाई तथा ड्रोन रेकी आ सडक विभागके सहजीकरण करबाक काम कर रहल अछि। अहिनाक नेपाली सेना बाढ़ प्रभावित नुवाकोट जिल्लाके विभिन्न स्थानमे आवत जावत सहज बनाव तीनटा तुइन जडान केने अछि। नुवाकोटके विदुर नगरपालिका 9 स्थित इन्द्रायणी घाटमे 250 मिटर लम्बाईके तुइन भादो 14 गते निर्माण शुरू कर 16 गते जडान सम्पन्न कयल गेल छल। तहिना ओही स्थानमे 240 मिटर लम्बाईके तुइन भादो 20 गते निर्माण शुरू कर 23 गते जडान सम्पन्न कयल गेल छल। तहिना नुवाकोटके विदुर नगरपालिका 5 स्थित देवीघाटमे 155 मिटर लम्बाईके तुइन भादो 19 गते निर्माण शुरू कर 20 गते जडान सम्पन्न कयल गेल छल। प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोकराज सिग्देल भोटेकोशी नदीमे आयल बाढ़ सभेल जनधनके क्षतिप्रति गहिर दुःख व्यक्त केने छथि। ओ भादो 22 गते सकल दर्जाके सम्बोधन क बाढ़मे दिवंगत भेनिहार सकल दर्जा प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक संतप्त परिवार जनमे संवेदना व्यक्त केने छथि। संगे ओ घायल सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना केने छथि। ओ कर्तव्य पालना के क्रम में संपर्क विहीन भेनिहार सकल दर्जा अवकाश प्राप्त सैनिक तथा आश्रित सैनिक परिवार के सदस्य सब आ वही पीड़ा सब मर्माहत भेल सैनिक परिवार जन के साथ में नेपाली सेना सदैव रहत बताने छथि। संगे ओ बाढ़ इलाक लगते खोज उद्धार आ राहत कार्य में सकल दर्जा देखाउने त्याग उच्च पेशागत दक्षता आ कार्य कुशलता के लेल धन्यवाद व्यक्त केने छथि। सैनिक उच्च शिखर शिक्षालय खटल टोली रसुवाके टिमुरे स्थित नेपाल चीन सीमा नाका रसुवागढीमे भादो 20 गते राष्ट्रिय झण्डा पुनर्स्थापना कर सलामी अर्पण केने अछि। भादो 10 गते आयल विनाशकारी बाढ़ उक्त सीमा नाकामे नेपाल दिस रहल सम्पूर्ण संरचना सब बहेलाके बाद टोली राष्ट्रिय झण्डा पुनर्स्थापना केने अछि। नेपाली सेनाके व्यवस्थापनमे निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवके आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अन्तर्गत महादेव चार सुरुङ मार्गके भदौ 18 गते ब्रेक थ्रु कयल गेल अछि। प्याकेज नम्बर 1 मे रहल मकवानपुरके भीमफेदी आ बकैया गाउँपालिकामे निर्माणाधीन महादेव चार सुरुङके जोडी सुरुङ मध्ये 3486 मिटर लम्बाई रहल काठमाडौँसँग निजगढ दिस जायवाला सुरुङके ब्रेक थ्रु कयल गेल अछि। ब्रेक थ्रु भेल ई सुरुङ नेपालक सडक सबमे निर्माण सम्पन्न भेल सुरुङ सब मध्ये सबसँ लम्बा सुरुङ अछि। काठमाडौँ उपत्यकाके तराई मधेस करिब 2 घण्टाके समयमे जोडलेल द्रुत मार्ग निर्माण भ रहल अछि। 70.977 किलोमिटर नभर उक्त द्रुत मार्गमे 7 स्थानमे कैर 11.210 किलोमिटर लम्बाईके तुइन ट्युब सुरुङ सब रहल अछि। उक्त सुरुङ सब मध्ये धेद्रे आ लेन डाँडा सुरुङके ब्रेक थ्रु भ चुकल अछि त अन्य 4 स्थानमे निर्माणाधीन अवस्थामे रहल अछि। पाल्पाके तानसेनमे भादो 20 गते ऐतिहासिक श्री 7 रण उजिरेश्वरी भगवती जात्रा एवं 207 खट जात्रा मनावल गेल अछि। जितगढी किल्लामे विक्रम सम्वत 1871 आ 72 भेल लडाईमे कर्णेल उजिर सिंह थापा नेतृत्वके नेपाली सेना अंग्रेज फौजके पराजित कयल खुसियालीमे विक्रम सम्वत 1877 निरन्तर रूपमे प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण नवमीके दिन यी जात्रा मनायल जाइत अछि। विशेष पूजा कर जात्रा शुभारम्भ करबाक परम्परा अनुसार भादो 19 गते नेपाली सेनाके दि फेमस महेन्द्र दल गणके गणपति प्रमुख सेनानी श्री शान्त कुमार थापा भगवतीके पूजा केने छलायन। तहिना भगवती मन्दिरमे कर्णेली पूजा कैर रथयात्राके विधिवत शुभारम्भ कयल गेल छल। रथमे श्री 7 रण उजिरेश्वरी भगवती देवीके मूर्ति आ कर्णेल उजिर सिंह थापाके खड्ग राख 3 बेर मन्दिर परिक्रमा कराक नेपाली सेना बढाइ देबाक प्रचलन रहल अछि। सुनै छलौ नेपाली सैनिक गतिविधि पूरा भेल।
2: नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम
0: श्रोता अखन अपने लोकन सुन रहल छी नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम। ई कार्यक्रम अपने लोकन नेपाली भाषा में 158, मैथिली भाषा में 34, भोजपुरी भाषा में 15 आ अवधी भाषा में 5 क रेडियो नेपाल सहित देश भर के 212 FM रेडियो सब से विभिन्न दिन तथा समय में सुनैत आबि रहल छी। तहिना नेपाली सेना को वेबसाइट nepalarmy.mil.np में सेहो सुन सकै छी। आप प्रस्तुत कर जा रहल छी नेपाली सेना भोटेकोशी क्षति भेल सड़क सञ्जाल सञ्चालन तथा बाढ़ सँ प्रभावित नागरिक सबके लक्षित क स्थापना केने एक्रो ब्रिज तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी रेडियो सामग्री।
1: श्रोता, विपद बाद के पहिल प्राथमिकता कहित प्रभावित नागरिक के उद्धार आ जीवन रक्षा अछि। तकर बाद घायल के उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा संगे सड़क संचालन आ क्षतिग्रस्त पुल तथा संरचना के पुनर्स्थापना आवश्यक होइत अछि। यह आवश्यकता के मध्यनजर करैत नेपाली सेना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा तथा भौतिक संरचना पुनर्स्थापना के समेत प्राथमिकता के संग आगू बढ़ा रहल अछि। विपद के प्रत्यक्ष प्रभाव में पड़ल नागरिक के सुरक्षित रखबाक संगे बाढ़ बाद हो सक वाला रोग संक्रमण आ मानसिक तनाव से जोगेनाइ सेहो उद्वेग आवश्यक होइत अछि। यह आवश्यकता अनुरूप नेपाली सेना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खोज उद्धार उपचार आ राहत वितरण लगायत विभिन्न भूमिका में रहकर कार्य कर रहल अछि। यह पृष्ठभूमि में आजुक कार्यक्रम में हम सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नेपाली सेना प्रदान करैत आयल स्वास्थ्य सेवा आ बाढ़ से अवरुद्ध सड़क मार्ग सब खुलाबे लेल कयल गेल प्रयास के संबंध में चर्चा करब। विषय प्रवेश करी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नेपाली सेना प्रदान कर रहल स्वास्थ्य सेवा से।
3: भादो 10 गते भोटे कोशी नदी में आयल भीषण बाढ़ पहुँचौने क्षति अकल्पनीय रहल अछि। जहिना ई बाढ़ पहुँचौने क्षति के आयतन पैघ अछि, ओहिना क विपद प्रतिकार्य समेत कठिन आ जोखिमपूर्ण अछि। अहि बीच नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय सब लगायत सरोकार वाला सब पक्ष के एकीकृत प्रयास आ साझा संकल्प विपद प्रतिकार्य के सबसे पैघ शक्ति बनल। आ अई विपद प्रतिकार्य में अग्रणी भूमिका में रहल नेपाली सेना। भोटे कोशी बाढ़ बाद विपद प्रतिकार्य में नेपाली सेना के सक्रियता, जत विपद ओत नेपाली सेना से कहबी के सार्थक केने अछि। विपद एलाक संगे खोज उद्धार उपचार राहत वितरण आ सड़क संजाल के पुनर्स्थापना जका सबटा कार्य में नेपाली सेना नागरिक के सारथी बनल। एहि क्रम में आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, घायल सबक उपचार, प्रभावित सबके मनोपरामर्श तथा प्रभावित क्षेत्र में होव सक वाला महामारी नियंत्रण लगायत के स्वास्थ्य सेवा में नेपाली सेना के भूमिका दोसर उपलब्धि बनल अछि। जैमे त्रिशुली आ धुंचे में स्थापना भेल आपतकालीन उपचार केंद्र मार्फत नेपाली सेना लगभग 4000 गोटे के स्वास्थ्य उपचार कर चुकल अछि। एहि संगे विपद प्रभावित क्षेत्र में फैल सक वाला संभावित महामारी के लक्षित क इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के समन्वय में कार्य केने जन स्वास्थ्य विद मुख सेनानी श्री सरिता दुवाल के कहब अछि।
4: कैंप भीतर महामारी फैल नै देवले हम सब कैंप भीतर के सर सफाई आ पीब वाला पानी के व्यवस्था में विशेष ध्यान केंद्रित केने छी। वास कार्यक्रम अंतर्गत हम सब कैंप में प्रवेश कैल समय से पीब वाला पानी शुद्धिकरण आ कैंप परिसर के पूर्ण रूप में डिस इन्फेक्शन करबाक कार्य के निरंतरता द रहल छी। एकर संगे कैंप भीतर के भानसा सबक नियमित निरीक्षण कत के सर सफाई के अवस्था सुधारित फूड हाइजीन आ फूड सेफ्टी संबंधी आवश्यक सचेत करौने छी। आ तोकल गेल मापदंड अनुसार कार्य कर सबके निर्देशन देने छी। मृतक सबके सब व्यवस्थापन से संभावित महामारी के जोखिम रोक लेल हम सब हेली डिस इन्फेक्शन कार्य के अत्याधिक प्राथमिकता में रखने छी। सब कैंप में अनला के बाद ओकरा हेली डिस इन्फेक्शन केनाई तथा कैंप भीतर डेड बॉडी राखल गेल संवेदनशील स्थान सब में समेत डिस इन्फेक्शन कार्य के विशेष जोर द क प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन कर रहल छी। एना हम सब स्वास्थ्य आ सुरक्षा के संपूर्ण मापदंड सबके पूर्ण रूप में पालना करैत आवश्यक उपाय सब अवलंबन कर रहल छी।
3: विपद द्वारा लावल जाय वाला संकट फरक फरक भ सकैत अछि। ई स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेहो लागू होइत अछि। तै भोटे कोशी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में लाव सक वाला स्वास्थ्य के विभिन्न संकट सब के लक्षित क नेपाली सेना स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहल अछि। वीरेन्द्र अस्पताल से विशेषज्ञ सहित के जनशक्ति, उपकरण तथा दवाई सहित के स्वास्थ्य कर्मी के टोली प्रभावित क्षेत्र में खटल अछि। नेपाली सेना उपचार आ परामर्श सेवा देव वाला विशेषज्ञ सल्लाहक आवश्यकता अनुसार सरसफाई धैर्य के कार्य कर सक वाला जनशक्ति खटाक सेवा दर हल एहने सेवा संभावित महामारी नियंत्रणक लेल निर्मलीकरण अर्थात डिसइन्फेक्ट सम्बन्धी कार्य सफाई कर्मी सागर सुनाम दर्जी
5: बाढ़ पीड़ित के कारण एमहर उमहर रहल सब स कीटाणु आ कीड़ा सब शरीर वा खाए वाला चीज सब में नई पड़े तै लेल हम सब दवाई छिटबाक काम कर रहल छी। काम शुरू करे से पहिने हाथ सैनिटाइज कर पियर रंग के पंजा लगा कर पीपीई सेट लगावत पड़त पीपीई लगेला के बाद दोसर पंजा मास्क हेड कवर वा टोपी बाहरी गाउन आ फेस शील्ड लगाव पड़त सब आब गेला के बाद हम सब पीपीई लगा कर हेलीकॉप्टर में जाय छी। दवाई छिट कर कीटाणु मार लेल 5 से 10 मिनट धरि बंद करत छी। सब लावल गेल बाट में दवाई छिटे सब भेल ठाव धरि पहुँचत छी। हम सब सुरक्षित ढंग से महामारी फैले नहीं देवे लेल सतर्कता अपनावत आवश्यक संपूर्ण प्रक्रिया सब नियमित रूप में पूरा करे छी। ओतो से सब उठेलाक बाद सब राखल स्थान में पुनः दवाई छिटे छी।
3: विपद प्रभावित क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर लेल जनशक्ति उपकरण आ दवाई उपलब्ध कराने अछि। ओना त विपद भौतिक क्षति मात्र नै कराबैत अछि, लोक के शरीर संगे मनस्थिति के सेहो विक्षिप्त बनाबैत अछि। बाढ़ के त्रास, घर संपत्ति के क्षति आ अपन लोक गुमेबाक पीड़ा प्रभावित नागरिक के विक्षिप्त कर रहल अछि। विपद द्वारा लावल गेल ई समस्या के समेत संबोधन कर लेल नेपाली सेना तनाव व्यवस्थापन के लेल प्रभावित क्षेत्रक नागरिक सब आ उद्धार में खटल सैनिक टोली के समेत मनोपरामर्श सेवा प्रदान कर रहल अछि। एहन परामर्श बाढ़ प्रभावित नागरिक आ ओहि क्षेत्र में खटल सैनिक सब के समेत आवश्यक पड़ला सेना प्रभावित क्षेत्र में मनोपरामर्श के समेत अपरिहार्य ठान्ने अछि। वीरेन्द्र अस्पतालक मानसिक तथा स्नायु रोग विशेषज्ञ प्राविधिक सेनानी डाक्टर श्री ओमकार ढुंगेल
6: आघात में पड़ल आ अपने आँख से विभत्स दृश्य देखल सबके अलावा उद्धार में खटल सुरक्षा कर्मी टोली के सेहो एहन दृश्य मन में पीड़ा जगबैत अछि। तकरे लेल डिस्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन कयल गेल अछि। हृदय ढुक ढुक भेनाई, विपद फेर आयत की लगनाई, तरसनाई आ राति में नींद नहि भेनाई एहन लक्षण उद्धार टोली में सेहो देखल जाइत अछि। ई लक्षण अखन एनाई स्वभाव किछु समय बाद कम होइत जाइत अछि से जानकारी करौनाई एकर पहिल कदम अछि। भविष्य में एंजाइटी, डिप्रेशन आ पीटीएसडी जका दीर्घकालीन समस्या आबि सकैत अछि। ओहन समस्या नहि होय से कहि कऽ हम सब अखन त्रिशूली में मनोवैज्ञानिक परामर्श आ विभिन्न थेरापी सब संचालन कर रहल छी।
3: अहि बीच बाढ़ सँ प्रभावित सब में डर, त्रास, नींद के समस्या, बेचैनी, अत्यधिक चिंता, निराशा आ घटना बारंबार याद एनाई लगायत के समस्या देखल जा सकैत अछि। बाढ़ सँ परिवार, घर, संपत्ति आ वास स्थान गुमाउने नागरिक गंभीर मानसिक आघात में पड़ सकबाक विषय के आंकलन करैत नेपाली सेना प्रभावित क्षेत्र में समय में मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सेवा के समेत प्राथमिकता देने अछि। बाढ़ के बाद हाल धैर के अवधि में प्रभावित सबके की केहन मनोपरामर्श सेवा प्रदान कर रहल अछि त एहि संबंध में जानकारी कराबैत पुनः वीरेन्द्र अस्पतालक मानसिक तथा स्नायु रोग विशेषज्ञ प्राविधिक सेनानी डाक्टर श्री ओमकार ढुंगेल।
5: हम सब छावनी अस्पताल से 15 गते त्रिशूली रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में एलाक बाद तत्काल स्वयं कर सक वाला कार्य सबक पहचान कर मनोपरामर्श सेवा आगू बढ़ेलो। अहि क्रम में मैलुंग आ सैफ्रुबेसी पोस्ट से सकुशल निकलल सर्वाइवर सबके विशेष रूप में केंद्रित कर धुंचे पहुँच डिस्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन करा वाला तरीका सब सिखेलो। मानसिक अवस्था सहज बनावा विभिन्न रिलैक्सेशन टेक्निक सबक संबंध में व्यवहारिक जानकारी करेलो। 7 से 19 गोटे सैनिक सबके सेहो एक ही ठाम में जमा कर हुनका सबके सेहो स्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ केयर परामर्श लेवा वाला सही समय आ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के आवश्यकता संबंधी प्रशिक्षण देलो। अहि पश्चात त्रिशूली स्थित शेरगढ़ में देवी घाट से सकुशल उद्धार भक आयल व्यक्ति सबके केंद्रित कर डिस्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन आ एकरा न्यूनीकरण करा वाला उपाय सबक संबंध में विस्तृत जानकारी करेलो। समग्र में हमारा सबक कार्य सब इहे छल।
3: नेपाली सेना स्वास्थ्य उपचार मनोपरामर्श सँगै प्रभावित नागरिक स्वच्छ आ गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोग गर सकै तै दिस समेत ध्यान देने अछि। एहि क्रममे विभिन्न स्रोत सँ संकलित राहत सामग्री के गुणस्तर जाँच केलाक बाद मात्र सेना प्रभावित क्षेत्र मे वितरण के लेल पठाव पोषणविद सबके खटौने अछि। एहि सँगै नेपाली सेना प्रभावित क्षेत्र मे स्वास्थ्य शिविर संचालन आ खाद्य गुणस्तर जाँच करैत आयल अछि। वीरेन्द्र अस्पतालक पोषणविद प्राविधिक सहसेनानी श्री एनजेएस पौडेल,
7: होल्डिङ सेन्टरमा आयल खाद्य व्यवस्था शारीरिक रूपमे अवलोकन करैत छी। विदेशी सहयोगमे आयल प्याकेजिङ सामग्री सबके एक्सपायरी अछि वा नै आ उपभोग अवधि कतै बाँकी अछि बुझ लेल स्क्यानिङ कयलौ। होल्डिङ सेन्टरमे बच्चा सबक पोषण उचाइ आ तौल माँ सबसे पुछि कऽ उमेर अनुसार तौल अछि कि नै, पोषणके स्थिति केहन अछि से जाँच बुझ कयलौ। दिन भर बच्चा सबके आवश्यक पड़ वाला पोषण के मात्रा पहुँचल अछि वा नै कहि कऽ माँ सबसे छलफल कर बच्चा सबक अवस्था बुझलौ। परामर्शदाता सब उपस्थित भेला सँ हम सब दवाई छाला रोग आ आहार संबंधी परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवा सब होल्डिंग सेंटर में जाकर सहज रूप में उपलब्ध करैलौ।
1: श्रोता, ऐसे पहिने हम सब भोटेकोशी बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्र में खटल सैनिक स्वास्थ्य कर्मी के टोली द्वारा देल जा रहल सेवा सबक संबंध में चर्चा केलौ। आब कार्यक्रम के दोसर खंड में भोटेकोशी बाढ़ से अवरुद्ध सड़क संजाल सुचारू कर लेल आ प्रभावित क्षेत्र सब में पहुँच विस्तार कर लेल नेपाली सेना द्वारा कैल गेल प्रयास के संबंध में चर्चा कर।

0: भादौ 10 गते आयल भोटिकोसी बाइड रसुवा नुवाकोट आ धादिङके विभिन्न राजमार्ग सब ओइ मार्ग सबमे रहल दर्जनौ पक्की पुल बेलीब्रिज तथा झुलुङ्गे पुल सब समेत ध्वस्त बनौलक। बाइड सडक आ पुल बहेलाक बाद आवागमन ठप्प भेल त नागरिकके दैनिक जीवन कष्टकर बनल। एहन अवस्थामे बाइड सँ टुटल पुल जोड्नै माने केवल दुटा किनारा जोड्ने मात्र नै भ रुकल जीवनके गतिशील बनेनै छल। यही आवश्यकता महसुस करैत नेपाली सेना बाइड सँ क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलके पुनर्स्थापना आ वैकल्पिक मार्ग निर्माणके तीव्रता दरहल अछि। अही क्रममे नुवाकोट आ रसुवाके लाइफ लाइन के रूपमे रहल गल्छी त्रिशुली खण्डके देवीघाटके तादी नदीमे एक्रो ब्रिज जडान कयल गेल अछि। श्रोता, नेपाली सेनाके सैनिक इन्जिनियरिङ फौजके निरन्तर मेहनत आ प्राविधिक दक्षता छोट अवधिमे एक्रो ब्रिज जडान भ अवरुद्ध सडक आ आवागमन सुचारू बनाउने अछि। नुवाकोटके विदुर नगरपालिका 5 देवीघाट स्थित तादी नदीमे एक्रो ब्रिज जडान भ सुचारू भ चुकल अछि। भादौ 19 गते सँ शुरू भ 5 दिनमे जडान कयल गेल उक्त ब्रिजके भादौ 25 गते नुवाकोटके प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शम्भु प्रसाद रेग्मी उद्घाटन केलनि। उद्घाटन कार्यक्रममे सम्बोधन करैत कार्यरथी विभागक विभागीय प्रमुख उपरथी श्री रञ्जित थापा पीएचडी कहे छथि,
1: सब सरोकार वाला सबके संयुक्त प्रयास टीम प्रयास सबक सहयोग आ समन्वय से सम्पन्न भेल अछि। 5 दिन लगलो पर रनिंग टाइम के काम कही त 72 घंटा भीतर में सम्पन्न भेल अछि। आई सड़क संजाल पुनर्स्थापित कक हम सब सुचारू बनौने छी। सबक सहयोग से ई संभव भेल अछि। प्राविधिक विषय संबंधी एत काम कर रहल प्रमुख सेनानी श्री करुण बहादुर थापा के नेतृत्व में ई काम सम्पन्न भेल जानकारी कराबे छी।
0: बाइड सडक आ पुल बहुला पर आवागमन मात्र नै रुकल छल, एकटा गाम आ दोसर ठाम बीच के सम्बन्ध समेत टुटल छल। विपदमे सहयोगी हात सब समेत प्रभावित क्षेत्र सबमे पहुँच नै सकल छल। एहन अवस्थामे एक्रो ब्रिज जडान भेलाक बाद खुसी बाटैत स्थानीय सब,
2: मेरो नाम चाहिँ माधव कुमार गजुरेल हो, म चाहिँ यहीँको स्थायी बासिन्दा, यो पुल
3: एतके स्थायी बासिन्दा छी आ ई पुल बनि रहल स्थानीय लग हमर घर अछि। हमर घर आ कपड़ा दोकान सब सबटा तोपा गेल। एतय सँ चलल 4 मिनट मे बाढ़ सब कुछ बहा देलक। एहन संकट के समय में सेना सब दिन उद्धार करैत अछि। ई पुल बनि गेलाक बाद एतय सँ गल्छी पहुँचला पर हम सब एके बेर भारत धरि पहुँच सकब। एतय सँ रसुवा जिला धादिंग के बहुते ठाम सब काठमांडू आ सिंधुपाल्चोक के किछ क्षेत्र सब सेहो अइमे जुड़त। ई बनि गेला पर अन्य बेली ब्रिज निर्माण के लेल सामान लावत सेहो सहज होयत। ई एकदम उपयुक्त कार्य भेल अछि।
4: मेरो नाम दुर्गा देवी दाल हो, विदुर नगरपालिका 5 मा मेरो पसल,
5: हमर घर बेलकोट गढी 8 आ दोकान विदुर नगरपालिका 5 मे छल। दोकान गोदाम आ गाडी सबटा दहा गेल। 14 गोटे परिवार बेत्रावती खोला सँ 1 सेकेन्ड सँ बचल। देवी घाट के कच्ची पुल सँ जाइत काल बहेबाक डर सँ पक्की पुल तर लगला पर दोसर दिस खोला उमेड रहल देख कऽ एने घुर कऽ पिपलटार भगलौ। हम सब सेहो 1 सेकेन्ड सँ बचलौ। भोरे उठ कऽ चाय पीब कऽ 2 घंटा पैदल चल कऽ ऊपर हल्चे खोला सँ पुल पार कर कऽ पिपलटार दाना फैक्ट्री ऊपर सँ निकल कऽ चल कऽ एलौं। 5-10 मिनट के बाट आब लेल 2 घंटा चल पड़ैत अछि। ई पुल बनला सँ बहुत खुशी लागल अछि। हम सब एत सँ आव जात कर पेने छी। एकर लेल सेना के बहुत बहुत धन्यवाद कहब।
4: धन्यवाद भन्छु।
1: तत्कालीन परिस्थिति में ई आवश्यक अछि। खाद्यान्न आ विभिन्न सर सामान के अभाव रहल समय में ई पुल बनि कऽ सुचारू भेल अछि, बहुत सहज भेल। नेपाली सेना आ सुरक्षा निकाय सब के विपद बाद के गतिविधि निक अछि।
6: खुशी नै महाखुशी कहूँ। खुशी त साधारण बात भेल। पुल निर्माण के बाद कपड़ा लता आ राशन सहयोग आयल, बहुत खुशी लागल
2: अछि।
0: नेपाली सेना जडान केने एक्रो ब्रिज स्थानीय बासिन्दा के मात्र सहज नै बनाउने अछि। ई विपद प्रभावित जिल्ला सबके एक आपस में जोड़ैत प्रभावित क्षेत्र में राहत लगायत के अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी के समेत सहज बनाउने जैसा राहत आ पुनर्स्थापना के थप गति प्रदान करत। एक्रोब्रिज जडान संगे यारो भेलाक बाद प्रभावित क्षेत्र में की केहन सहजता लावत त विदुर नगर पालिका के प्रमुख श्री राजन श्रेष्ठ।
3: बहुत पैघ सहयोग आदान प्रदान भेल अछि आ समन्वयकारी भूमिका रहल अछि। ई वज्रपात आ महाप्रलय के अवस्था में नेपाली सेना निर्वाह केने भूमिका सराहनीय अछि। हम हुनका सबके आभार व्यक्त करै छी। पाँच दिन में अमेरिकन पद्धति के पुल निर्माण सम्पन्न भेल अछि। ई पुल एतय जनजीवन के सहज बनौने अछि आ पृथ्वी राजमार्ग के पहुँच जोड़ने अछि। विदुर नगर पालिका के स्थानीय बासिंदा के रसुवा जोड़ कर बड़का सहयोग। स्पष्ट रूप में कही त नेपाली सेना से हम सब हरेक दिन मिलकर काम कर रहल अवस्था अछि।
0: नागरिक के हरेक दुख में संग द रहल नेपाली सेना बाइट द्वारा संबंध विच्छेद कैल गेल बस्ती सब के एक आपस में जोड़े वाला कार्य में अग्रणी भूमिका निर्वाह करत आयल अछि। अ क्रम में बाढ़ के किस दिन में अस्थायी विकल्प के रूप में नेपाली सेना नुवाकोट के विदुर नगर पालिका 5 देवी घाट में एकटा आ विदुर नगर पालिका 9 इंद्रायणी घाट में दूटा ट्विन जडान केने छल। सेना के एहन सक्रियता आ पहल कदमी के सर्वसाधारण प्रशंसा केने छथि स्थानीय कुल बहादुर खाती।
1: नेपाली सेना पुल बना देलक हमरा सबके बहुत खुशी लागल अछि। ऐसा जनता के सहज भेल अछि। जनता के लेल ओ सब दिन रात नै कहि क काम कर रहल अछि। पहिने आर पार कर लेल बड़का संकट भेल छल। अखन पुल बन गेला के बाद हमरा सबके सहज भ रहल अछि। नेपाली सेना के ई काम प्रति हम सब बहुत खुशी छी।
0: नेपाली सेनाक सकल दर्जा अपन परिवार आ व्यक्तिगत सुविधा सँ अलग कर्तव्य के प्राथमिकता दैत विपद प्रभावित के जीवन रक्षा में अपना के समर्पित करैत पुनः एक बेर जन भरोसा आ जनविश्वास के उत्कर्ष पर पहुँचौने अछि। संघीय प्रदेश तथा स्थानीय सरकार के निकाय अन्य सुरक्षा निकाय गैर सरकारी संस्था तथा स्थानीय समुदाय सब सँ सहकार्य आ समन्वय तथा साझा प्रयास भुटेकोशी बाढ़ बाद के विपद प्रतिकार्य के प्रभावकारी बनौने अछि। तै ई विपद प्रतिकार्य में सब सरकार वाला पक्ष सब के योगदान स्मरणीय अछि प्रशंसनीय अछि। आब के पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापना कार्य में समेत सब संगे हाथ में हाथ मिलाव नेपाली सेना प्रतिबद्ध अछि।
5: श्रोता अही प्रस्तुति संगे आजुक कार्यक्रम के निर्धारित समयावधि पूरा होब लागल अछि। आजुक कार्यक्रम अपने लोकन के केहन लागल? कार्यक्रम प्रति कोनो सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया अछि त armyradio2008@gmail.com में ईमेल पठा सकै छी। श्रोता आजुक कार्यक्रम सँ प्राविधिक सहकर्मी प्राविधिक सुबेदार सुदीप ढकाल संगे हम प्राविधिक सुबेदार अजिता घिमिरे सेहो बिदा लेब। नमस्ते।
7: एखन अपने सब सुनि रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचो सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: ये दिदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कोन उपाय करबै?
3: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
4: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
3: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
5: गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनाबारी गड़बड़ी,
3: पीठ आ डाँर दुखेनाई,
5: पिशाब जलन,
3: मांस बढ़नाई,
5: निसंतान दंपति के परीक्षण,
3: IUI सेवा,
5: वीडियो एक्सरे,
4: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध
5: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
5: मोबाइल
4: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: Extreme Energy Drink.
1: ये सुनू
2: की कहे छे?
1: हम जाए छी तिरुपति ट्रेडर्स में, वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू बीजन भेटे छे, खरीद लेबे आ चल अबे।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे।
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
2: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
2: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
2: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
2: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8।
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9807452178।
5: अखन अपने साथ रहिए बोलकबा।

0: এখন ভড়কওয়া এফএম দিনকে ন বাজল বাইর কে মৌসম মে সতর্ক রহু আ সুরক্ষিত রহু বাইর কোনো বখত আইব সকেত আছে তাই প্রতিকার্য কে লেল তৈয়ার রহু
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कैल गेल अछि जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहां के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वडा कार्यालय स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति से प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नै क तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाय वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला क घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सकय वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू। संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लो जाओ।
1: दोसरो के मदद करू। बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाय ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज
4: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
3: अठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
5: सेवा आ सुविधा सब
4: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा OPD मेडिसिन सेवा
5: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
4: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन ICU NICU OT
3: डिजिटल एक्सरे AC नॉन AC कैबिन के सुविधा है।
5: संपर्क कैल जाए
4: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
5: फोन
4: 031-35-7076
5: मोबाइल
4: 98015-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
6: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता
7: सहले पानी चाहा पानी
8: कैश फिरता लिनु भएता
9: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीका खबर छौ।
2: कथि छौ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज्य विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगर प्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एहिठाम विदेश जेबाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश जेबाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संग हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0131532575,
3: मोबाइल
4: 9801502475।
5: रंग बहार रंग बहार,
6: बर्जर संगे उपहारे उपहार, बम्पर मा यामाहा रेजियार,
5: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
6: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ, खुशी बढाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
5: बर्जर पेंस।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: खाइए कोन उपाय करबै?
1: बहुत पुरान आ अनुभवी छै डॉक्टर दिलीप कुमार साह, अपने घर में सेवा दे रहल छै, चलू ने ओते जांच करा दे छी।
2: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
0: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
0: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
1: गर्भवती महिला जांच,
0: स्त्री रोग,
1: लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी,
0: पीठ आ डाँड दुखेनाई,
1: पेशाब जलन,
0: मांस बढ़नाई,
1: निसंतान दंपति के परीक्षण,
0: IUI सेवा,
1: वीडियो एक्सरे,
2: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध
1: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
1: मोबाइल
2: 9861 77 985 आ 9871 79 133।

0: Mania and Extreme Energy Drink.
1: ये सुनू
2: की कहे छे?
1: हम जाए छी तिरुपति ट्रेडर्स में, वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू बीजन भेटे छे, खरीद लेबे आ चल अबे।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे।
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
3: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
3: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
3: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
3: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8,
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847452178।
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: एखन भड़कवा एफएम में दिन के 10 बाजल
1: अपने सब सुन रहल छी भड़कवा एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज पर।
0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
2: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 98080 11978।
3: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छे, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छे।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छे।
3: आप चिंता नहीं कर, चल मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै।
4: एरो आ हमारे डाण के नस बड़ दुखाई या बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 24 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए परत छाता, टोपी, चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ दूर रहिए, बोलो कुबा।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी तो सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल तो देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि तो बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लो जाओ।
1: दूसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाई ग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया, सुरक्षित रहू।

0: रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचो सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
3: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
2: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटै छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटै छे।
3: ओ तो की सब तैयार करै छे यो?
2: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
4: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुट्टा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत।
6: संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाय, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
4: प्रोप्राइटर शंभू सुथियार।
6: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
4: मोबाइल
6: 9807040070 आ 9628860270।
7: फिरता फिरता 20% समस्या सफिरता सहीले पनि चाह पनि
8: क्याश फिरता लिनु भए त
9: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: Estonia. Extreme energy drink.
1: अपने साथ जुड़ रही थी बोलो कुमार।

0: एखन भोरकवा एफएम मा दिन के 11 बाजल
1: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज
2: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि
1: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि
3: सेवा आ सुविधा सब
2: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
3: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
2: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
1: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है
3: संपर्क कैल जाए
2: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
3: फोन
2: 031-530-7076
3: मोबाइल
2: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202
4: फिरता 20% समक्यास फिरता सहिले पनी चाहा पनी
5: क्याश फिरता लिनु भायता
6: एनसेल प्याक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ गोरुको एफएम 92.8 मेगाहर्जमा

कुलो एल्को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुलो एल चिसो चिसो कुल कुल।

0: कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जाँच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता जैले पनी चाहा पनी
6: क्याश फिरता लिनु भए त
7: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: कुलो एल्को दुई मिनट को मालिस ले रख्छ तपाईलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुलो एल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: यै सुनु,
2: के कहै छे?
1: हम जाइ छी तिरुपति ट्रेडर्स में, ओइ ठाम सीजन अनुसार के सब व्यू विजन भेटै छे, खरीद लेबै आ चलि अबै।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबै।
1: हेतै
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
3: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
3: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
3: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
3: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8।
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847552178।
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: এখন ভড়কওয়া এফএম মা দিনকে এক বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800 11978।
2: फिरता 20% समस्या फिरता सहीले पनि चाह पनि
3: क्याश फिरता लिनु भए त
4: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: Mania?
1: Extreme energy drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचाव वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाता है। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: अपने साथ रहिए बोलकबा FM।

0: भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: अहाँको गहना बडा सुन्दर यो डिजाइनो नयाँ कता बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राजविराज में बनेलिए। ओतय आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबै छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटै छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राजविराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 98-97-40-445।
5: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
6: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
5: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कैल जाए
6: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
6: 031-530-7776।
2: मोबाइल
6: 98015-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
2: कोनो सुविधा संपन्न जगह नहीं छै?
4: छै ना तो कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज राजविराज। ओहिठाम हरेक शुभ कार्य विवाह मुंडन हरेक दृष्टि कोण से सुविधा संपन्न छै।
5: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम
6: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज।
5: हर एक शुभ कार्य शुभ विवाह उपनयन मुंडन आ पार्टी के लेल सुविधा संपन्न
6: कृष्णा पार्टी पैलेस। एहिठाम आकर्षक सजावट सहित एसी नॉन एसी डिलक्स आ कॉमन रूम
5: 24 घंटा बिजली सुविधा स्वच्छ खाने पानी
6: शांत वातावरण में विवाह स्थल सेमिनार तालीम हॉल के व्यवस्था है।
5: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था।
6: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज 33 गाछी राजविराज 70।
5: मोबाइल
6: 98047-48-454 आ 98428-22430।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुशी के खबर छौ।
2: कथि छौ? से
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवा के लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीसा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 031352575।
3: मोबाइल
4: 9805002।

0: Insomnia Extreme Energy Drink.
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: এখন ভরতমা এফএম দিনকে দু বাজল বাইর কে মৌসম মে সতর্ক রহু আ সুরক্ষিত রহু বাইর কোনো বখত আইব সকেত আছে তাই প্রতিকার্য কে লেল তৈয়ার রহু
1: জল তথা মৌসম বিজ্ঞান বিভাগ ডিএইচএম দ্বারা নেপাল কে বিভিন্ন ভাগ মে ঔসত সে বেশি বর্ষা হবাক পূর্ব অনুমান কেল গেল আছে যেই কারণ বাইর আ কাটান কে জোখিম বড় সকেত আছে
0: সতর্ক রহি কা আবশ্যক জানকারী প্রাপ্ত করু আ স্থানীয় সূচনা সব কে পালন করু আহাঁ কে সুরক্ষা अही के जानकारी पर निर्भर है
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वडा कार्यालय स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनु आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट मोबाइल फोन चार्जर दवाई सूखा खाए वाला सामान सफा पीबा वाला पानी नगद रुपया नागरिकता पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लो जाओ
1: दूसरों के मदद करू बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू गर्भवती सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू।

0: आज विराजमै आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलोजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808011978।
2: हे कन्या, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कतो बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। ओतः आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राज विराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9197440445।
5: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
2: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक है जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
5: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया। आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
2: ओ तो की सब तैयार करे छे यो?
5: बॉक्स पलंग 3 पीस आ 2 पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगाए फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: प्रोप्राइटर शंभु सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
5: 9847040070 आ 9862886270।
6: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता सहीले पनि चाह पनि
7: क्याश फिरता लिनु भए त
8: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: भारत कुल ओइल को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: कतेक दर्द करे छे ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे
2: की भ गेला से
1: ओ बुआ नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे
3: आप चिंता नहीं कर चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो
4: एरो आ हमारे डाढ़ का नस बड़ दुखाइया बारे ठीक भ जाते ना
2: पूरे ठीक भ जाते
5: जी हाँ हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए प्लास्टर ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि संपर्क कैल जाए
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल नर्मदा अर्थो केयर सेंटर राजविराज नेता चौक दक्षिण हीरा फार्मेसी
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आलैछि
8: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई
6: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सब बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल अछि फिल्म हनुमान अंश
9: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश
10: अपने साथ रहती बोलकवा एफएम।

0: Media
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: रत्न कुल ओइलको 2 मिनेटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं करो, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै।
4: रो आ हमर डाढ़ का नस बड़ दुखाई या बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाय, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096। आब अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 24 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: ये सुनो
3: की कहे छे
2: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब व्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि एबे
3: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
2: हेते
4: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
5: जी हाँ एहि ठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
4: चप्पल बनावे वाला मशीन
5: मुर्गा दाना बनावे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
5: थ्रेसर
3: रोटावेटर
5: कंपाइंड धान आ गहूँ काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
5: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
5: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
4: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
5: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
4: मोबाइल
5: 9877888897 आ 9847452178
6: अखन अपने साथ रहिची बोलकवा ए फिर

0: এখন ভরকওয়া এফএম দিনকে 4 বাজল রাজবিরাজ মে আপ সব প্রত্যেক দিন বরিষ্ঠ ছালা যৌন রোগ তথা সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রঞ্জু পোখরেল MBBS MD ডার্মাটোলজিস্ট দ্বারা যাচ ইলাজ ভ রহল আছে
1: যা এহেন কোন সমস্যা আছে তা নিক আ প্রভাবকারী ইলাজ কে লেল अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करो।
0: याद रखो सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता सहेले पनी चाहा पनी
3: कैश फिरता लिनु भएता
4: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: Extreme energy drink.
1: এখন আপনি শুনছেন ভারতবর্ষ 92.8 মেগাহার্টজ।

0: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
1: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
0: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
1: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
2: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
1: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
0: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कैल जाए
1: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
1: 031-5370-76,
2: मोबाइल
1: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।
2: एतो कोनो सुविधा संपन्न जगह नहीं छै?
3: छै ना तो कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज राजविराज, ओइठाम हरेक शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, हरेक दृष्टि कोण से सुविधा संपन्न छै।
0: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम,
1: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज।
0: हर एक शुभ कार्य, शुभ विवाह, उपनयन, मुंडन आ पार्टी के लेल सुविधा संपन्न
1: कृष्णा पार्टी पैलेस। एहिठाम आकर्षक सजावट सहित एसी, नॉन एसी, डीलक्स आ कॉमन रूम,
0: 24 घंटा बिजली सुविधा, स्वच्छ खाने पानी,
1: शांत वातावरण में विवाह स्थल, सेमिनार, तालीम हॉल के व्यवस्था है,
0: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था।
1: बुकिंग के लेल संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज, 33 राजविराज, 70,
0: मोबाइल
1: 9807-48-454 आ 9848-22-430।

0: कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले रक्ष तपाईँलाई कुल दिलाउँछ, गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीका खबर छौ।
2: कथि छ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज में चालू भ गेल छी। आँख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जा पड़त।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एहिठाम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश जवाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संग हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 031352575।
3: मोबाइल
4: 9805102।

0: Extreme energy drink.
1: अपने साथ दूर रहिए, बोर रखो।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिस लिएर छ तपाईँलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
1: बर्जर पेंस

0: Radio.
1: Extreme energy drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
0: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
0: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
0: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
0: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
0: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
0: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए त स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9807111978।
2: हे कनिया, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कतो बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का घर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छी।
4: काव्या ज्वेलर्स राज विराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9897404545।
5: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
2: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक है जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
5: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया। वही ठाम सब सामान भेटे छे।
2: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
5: बॉक्स पलंग, 3 पीस आ 2 पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जात। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फोर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: प्रोप्राइटर शंभु सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर, राजविराज 1 कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
5: 9847004070 आ 9862866270।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: अपने साथ रहती बोरकवा।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: ये सुनो
2: की कहे छे
1: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब व्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे चल लेबे
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज
4: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
4: थ्रेसर
3: रोटावेटर
4: कम्पाइन धान आ गहूम काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
4: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847452178
5: अपांगता भेल व्यक्ति बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही
6: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि ताहि एहन अवस्था में जर एनाय उल्टी जकाँ लगनाय थकान लगनाय बेसी प्यास लगनाय धड़कन बढ़नाय श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय अत्यधिक माथ दुखेनाय बेहोश भेनाय मांसपेशी सब दुखेनाय उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि
5: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब
6: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ
5: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए
6: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए
5: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए
6: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ
5: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए
6: खाली पेट बाहर नहीं जाओ
5: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए
6: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाता है
7: सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संघ सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश
8: एखन अपने सब सुन रहे भोरकवा।

0: यो बाढीको मौसममा सजग हुनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। बाढी जुनसुकै बेला आउन सक्छ, प्रतिकारका लागि तयार रहनुहोस्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डिएचएमले नेपालका अधिकांश भागमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ, जसका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ। सजग रही आवश्यक जानकारी लिनुहोस् र स्थानीय सूचनाहरूको पालना गर्नुहोस्। तपाईँको सुरक्षा यिनै कुरामा भर पर्छ।
1: बाढीको जोखिम भएमा यी उपायहरू अप्नाउनुहोस्।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डिएचएम, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट प्राप्त बाढी सम्बन्धी जानकारी र चेतावनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र त्यसअनुसार उपयुक्त कदम चाल्नुहोस्।
1: नजिकका नदी र खोला नालामा पानीको सतह नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्।
0: यदि तपाईँ नदी किनार वा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने सुरक्षित आश्रय स्थल वा उच्च स्थानहरू पहिचान गर्नुहोस् र त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले निस्किन सकिने बाटोहरू खोज्नुहोस्।
1: चेतावनी जारी भएमा ढिलो नगरी तुरन्तै सुरक्षित स्थानमा जान तयार रहनुहोस्।
0: अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तै टर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, औषधि, सुक्खा खानेकुरा, सफा पिउने पानी, नगद र परिचय खुल्ने कागजातहरू जस्तै नागरिकता, राहदानी वा अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रहरू एउटा झटपट झोलामा तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्।
1: झटपट झोलालाई घरभित्र सजिलै देखिने र तुरुन्तै लैजान सकिने स्थानमा राख्नुहोस्।
0: आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुहोस्। सम्भव भएमा बहुमूल्य वस्तु र चौपायाहरूलाई उच्च स्थानमा सार्नुहोस्। अरूलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहोस्। गर्भवती, सुत्केरी र स्तनपान गराइरहेका आमाहरूका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुहोस्। उनीहरूका लागि सकेसम्म छुट्टै र सुरक्षित शौचालयको प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।
1: विपदपछि हुन सक्ने सर्पदंश तथा पानीजन्य संक्रामक रोगले निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमप्रति सचेत रहनुहोस्।
0: यो सूचना तपाईँका साथी, परिवार र छिमेकीहरूसँग पनि बाँड्नुहोस्।
1: बाढी ढोकामा आइपुग्नु अघि नै तयार रहौ, आजैदेखि सतर्क रहौ।
0: यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड अन्तर्गतको हाई ग्रिड परियोजनाबाट अस्ट्रेलियन सरकार र सबल नेपालको सहयोगमा प्रसारण गरिएको हो।
1: चेतावनीहरू सुन्नुहोस्, द्रुत कदम चाल्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।
2: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डाक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल है।
3: ज एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डाक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
2: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
3: फोन नंबर 9800 11978।
4: हे कनिया, अहाँक गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कतौ बनेलिए?
5: हे काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। ओतऽ आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना, ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबै छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटै छै।
6: काव्या ज्वेलर्स राज विराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9817440445।
4: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
5: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार साह, अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
7: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह, टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD।
5: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
7: सेवा आ सुविधा सब
5: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जाँच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँर दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
7: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
5: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
7: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब। छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
5: मोबाइल
7: 9816177985 आ 9817189133।
8: कतेक दर्द करे छे, ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
9: की भ गेला से?
8: ओ बुआ, नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे।
6: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
9: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
5: रो आ हमारे डाण का नस बड़ दुखाया बारे, ठीक भ जाते ना?
9: पूरे ठीक भ जाते।
7: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
1: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
7: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
1: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
10: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
3: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।

0: ये না শুনছি হ্যাঁ আর তুই এতে তো দোকানদার মাথা চাটিছে একবার কে দিচ্ছে দোকান দুইবার তিনবার চারবার আইবকে পুছিছে যে ওইখানে কি সব খেবি আর আমার ঘর কোন লোক তো টেরবে না করেছে ইয়া না শুনেছি আর তুই লাঠিও রেতিয়ে তো আপনি কিছু কইতিয়ে লাঠিও নেই সে লাগাম
1: কি বাদ আছে ইয়া ককাল মারে লাঠি তাকাচিয়ে ডর নাই আজি জানমো
0: ডর তো তে মিলে যা কি কি না ভাগলি
1: সব ককরা মারবে কাহা সে কুতা বিলাগ না মিয়াল জাহান লাঠি তাকাচিয়ে মারাইল
0: না মু সে বলা গলি
1: মু কা সময়ের করাকবে তে নাই হাত মু সে বলা গেল হা কথি কইছে সে কহু না আমরা
0: খেল দিয়া
1: খেল কথি কা দেব হা আমরা হিসাব দলিয়ে যে খেল দেব
0: আর তুই কোন সামান কিনে লজেনে জেলিয়ে যে হিসাব দেবা কা
1: সামান কিনাইল নাই দেনা রিয়ে লেকিন আহাকা যে আমার গাম সে এলিয়ে 2000 টাকা আহাকা সঙ্গ মে ছলে আমার ভাইয়া ফোন করকে কহলকে যে মেজমান কা 2000 টাকা যে ছে ছে সব সব বেড়ি লাগা কা দেলিও
0: বেড়ি লাগা কা দলকে উসাইট গলি সব ভুস ভাগলি টাকা
1: কথি কিন লিয়ে ছুছে হাতে এলিয়ে তো ভুস কেনা কর দেলিয়ে কথি মে সাইট গাল এক এক কা পয়লা হিসাব দিয়ে তব খানা মিলত
0: চমচমাটা গেল দিয়ে আর কোনো বাত
1: কোনো বাত
0: চমচমাটা গেলিয়ে ওইদিনা দোকান মে গেলিয়ে অর্ডার করলিয়ে তকর বাদ মে কলকে কি সব খেবি তো কলিয়ে যে যে তোরা দোকান মে বনল ছো ফরাই ঝরাই ও কথি কে যে গিরাবি আর তকর বাদ মে সব চিজ রে সব খেলিয়ে বেড়া বেড়ি কে টাকা ভুষ ভে গেলি
1: আহাক ভনা খেলিয়ে আহাক পেট হন্ডি বমজি ই সব কিছু আইট গেল আহাক পেট মে বড়িয়ে বাত ছে লেকিন টাকা কি করলিয়ে সে পয়লা কহু না আমার ভাইয়া যে ফোন করকে কহলকে যে 2000 টাকা দেনা রিও মেজমান কা সঙ্গ মে তকর হিসাব দিয়ে না হা
0: এ 2000 টাকা দিলকে তে ওতেক মেহনত তো কর দিলিয়ে না হম হ আও লিয়ে তো যতেক মতলব দিয়াদি মে রে না ছটকা জটকা মজলা সজলা চার চরুলনি যতেক ছিল সব কব গোড় লাগলিয়ে না তো গোড় লাগে চলে এলিয়ে আর চলে এলিয়ে তাকে ভইয়া যে ছিল 2100 টাকা দিলকে আমরা কালকে লিয়ে মেজমান ই বিদাগরি ভেল লেকিন এই মস্ত আমরা পিসি দা দিয়ে
1: আগো বাবু স ভাইয়া তো 100 টাকা ছড়িয়ে দেনা রে মতলব 2100 টাকা ভে গেল রে আহাকে না
0: হ্যাঁ
1: তো কোন সিসি দেলা কাহাকো
0: এ পিসি মাংলকে কমিশন কমিশন
1: হে আমরা ভাইয়া কা দে নাই দাহু সে কই দে চিনে তো মুই হে নোচ লাব
0: মু কে না কর নোচবে ওইট না যে ওতে এতেক দিন যতেক দিন রহলিয়ে হম তো চতরাইর মে ওতেক দিন ও দোসে তিন আর কা তোকার 5 গুণা টাকা কমাই লাল ভাই দিতি আমরা
1: 5 গুণা কমাই হয়েছে একরা এহনে বল গোবনা লোক লোক জন মে রাখতে ও তো হামরে গাম কা রহে না হামরে নেহরা কা দর দিয়া যে অথি দুইটা 2000 টকো দেলকে 2100 না তো ইহান লোক 5টা টাকা তো কই দেবে না করতে
0: এ হম বল গোবনা যা
1: তো কথি চিয়া কিছু করে কা লুইরে না ইয়া একটা জারনা ফারাইলে দেলক তো 10 ডিবিয়া তেল জরল আহাকে জারনা ফারাইল
0: 10 মিনিট মে একটা ডেঙ্গড়ি ফার দিলিয়ে তকর বাদ মে আধা ঘন্টা মে এক ট্রেক্টর ইটা উই দিলিয়ে আর তাইকে বাদ মে খেত গেলিয়ে ক্যা বের গেলিয়ে আইলিয়ে একটা বাদ দোসর বাদ একেল গোড় লাগায় কইছে হ্যাঁ একটা গোড় লাগায় ঝড়ে জন লোককে 2000 টাকা দিয়েছে মেজমান হম এত মেহনত করলিয়ে না হে কিন্তু আমার দা দিয়ে না তো আমার সাঁত কে চলে যাবে চমচমাটা আর সে বাত একটা বাত আর কে দিলকি ই পিসি আর কমিশন বলা ভাঁজ আর ই গপ আমরা সে লেলকে সে আহ কত तो नहीं बाजबे न तो फिर दोहरा के अहा के जड़बो नहीं कर टका झगड़ा उठ जात
1: से कथी ला
0: मतलब अहा के भैया कल के जे दियादिए में झगड़ा उठ जते कोनो मेहमान ये तो न कोई गोर लागते तो टको नहीं देती
1: आगो बाबू सो 2061 टका पचबै खातिर कते हमरा भैया के दे डाहे छे एकरा केना के मुंह में बाजे में नीक लागे छे कोन मुंह ले के बाजे छे केना के बाजल जाय छे एको रति विचारो नहि छे मु बाजैत
0: न त एकटा गप कहू त
1: हमर भैया के केना के दे डाहे छे एहन नीक भैया क
0: ए आके भैया के हम दे डाहे क्या हमर माय के जे कल के खतुरनी उ बड़ नीक भेला
1: हमर माय बाप नहीं छिया अहाँ का माय केना के कहलक जे अहाँ अपना माय बाप के पठा दियो तो भैंस चरेते कुटी लगेते कथी छिया हमरा द्वार पर तो नौकर नहीं छ हमर माय बाप या तो अहाँ के नौकरी करे ल अहाँ के माय बाप बड़ धनी
0: धनी नहीं छे तो ना आय के बाद हम अहाँ संगे कतौ जाय वाला नहीं छी
1: नहीं जाओ ना अहाँ के ले के जाइये यहाँ लोग से कथी लोग ले जते गाड़ी घोड़ा कोनो कनिये चले छे भाड़ा तिरवा चल जाए स्टैंडर से
0: हाँ स्टैंडर से चल जाओ ना वह कारण से अब हम जेबे न करबे
1: नहीं जाओ ना नहीं जाओ ना नहीं जाओ ना
0: कमेलिए हम आ पीछी खेते एकर भैया
1: हे मुंह संभाल के बाजू से कह दे छी 2061 टका के केना के एके छड़ में खा लेलिए कते टका पेट ये अहाँ के अखनी बाबू नहीं छे ना तै दुआरे अहाँ के सब बात पूछे छी
0: आ सुनो ना केना के खेलिए जाबत तक रहलिए ना परदेश में अहाँ तो चल एलिए तै के बाद में टर टर झोर दे माछ के एकटा दूटा टुकड़ी दे न पेटे भरे न मने आगावे
1: आगो बाबू सब को बाबू सब तब दुनिया में लोग कहे छे की जे माल जाल के पोसी तो फोन कटावे छे लोग के पोसी तो फोन दियावे छे अकरा जे छे से आधा आधा किलो के माछ दे मौस दे खाय ल आ से केना के नित गुनिया के करती गुण रहो मन में एक एक थारी के भात खा ले चार दाय परसल लेत रहे और दिया कनी ऊ माछ दिया कनी ऊ माछ दिया आ केना के एहन बात बाजे छे गो बाबू सब एको रती ने विचार है छे मन में
0: ओ त अहाँ के सामने में फर्स्ट दिना ने दोसर दिना देलके न अहाँ जे चल एलिए तकर बाद में त शुरू भ गेल बचिया भात के पल्ल तकर बाद में ओ की कहे छे से आ माछ मतलब जे छे न वो ओहिना दुई किस्म के माछ मछली नहीं बुझलिए से
1: केना के दुई किस्म के एक टा लोहिया में केना के बनबैत रहे दुई किस्म के
0: एक बेर की करे टर टर झोर दे दे जय आदमी छे मुड़िए पिछू माछ मुड़िए पिछू मौस एक टा के बुट्टी वो अलग निकाल ले आ स्पेशल जो सब खाए तो वो सब निचो खाए तो तेना करके अंतिम
1: आ केना के मुझौसा आ केना के बुझ गेले जी स्पेशल छिए या ई जे छे से अथी छे टट्टर झोर छिए
0: जिंदगी भर माछे मार के खेलिया मौसे खेलिए तो हम ने बुझबा सब कोई खा ले तो अंतिम सुतल रहिए तब के मेजबान चल न खेल
1: तो सुत रहे छले तो केना के उठा त हां धिया पुता छिए मोर मेजबान के काम छिए बैठल रहते खाना बनते बोलेते चाय के खा लेते तब नीठा से खर्रत रहिए नींद तो की करते वे लोग का कथी ल जगेते सब खा ले उरल पुरल खिया दे हाथ
0: ए कथी हम बोगला छिए यार
1: क्या न गेलू बोगला छे की कौआ छे की कथी छे से तही जानबे
0: बैठल रहबे पोखर के त जना बोगला एकदम ध्यान देने रह छे कखनी माछ ऊपर में एते जड़ लोल मारबे से बुझ लेलिया हमरा
1: वैसे की कम छे वैसे एको टका ने कम छे ऐसा बढ़िया धा बोगले भ जाती है तो बहुत नीक हेती है हमरो कपार में त नीक रहती है
0: हां देखलो आ के भैया खात रहे अहाँ के घर में जे चले रहे उजरा वो कथी कहे छे डॉगी डॉगी मुंह ताकत रहे छे सब बुझ लेलिए हमरा
1: हे भगवान एकरा नहीं ले जाए वाला छे गो बाबू स अखनी त भाग से बुढ़बा बुढ़िया नहीं छे अंगना में न त ई सब कहानी सुन लेती है तब हमरा त और उलहन देती दिन देखा रे
0: अच्छा ले सठल ये हिसाब
1: नहीं नहीं सठले हमरा 2000 टका चाहिए
0: सुन हमरा खाय ला दे दियो ना हम आन दे छी
1: खाय ल केहन बात करे छिये यहाँ के केना के खाय ला दे पहले तो हमरा गोट गोट के हिसाब पुगते तब खाय ला दे की
0: अच्छा एकटा गप कहू तो
1: कथी
0: जमा 2100 टका दल के गोर लगाए बेहरी झाड़के तो ओहिमे एक सौ टका छोड़िए दियो मान लिया हिसाब में पैसा पैसा कत से हेतु 20% कमीशन कतेक भेले 20 × 40 400 टका भला
1: भेले लेकिन हमरा भैया के देह नहीं डाउ से कह दे छी फेर कह छी फेरो कह
0: अखने फोन लगेवम
1: लगाबिए तो फोन हिम्मत या तो लगाबो तो फोन
0: पहले हिसाब ला लियो
1: हां कहू
0: 20 × 40 नहीं पढ़ल छे तैयो की ठकवा पड़ले न छे तो ओते हिसाब कर ले जा हमरा कौन बात 20 × 40 400 टका बच गेलै 1400 टका
1: आगो बाबू सब कते चमचमडा में खाना पीना छे बोलियो करती फुटै छे बोली केना लटपटाय छे
0: ए बोली लटपटाय छे ठीके त कह लिए 2000 टका में 400 घट गेले 1400 टका भेल न
1: हां
0: अच्छा तो एक बाद में उठना छ वो चौक एलिए चिट्टी रिक्शा पर 200 टका उ ला लेलकी
1: सिटी वाला 200 टका ला लेलो कहाँ कोनो विदेश का लोग रही से कहलिए नहीं
0: अढ़ाई टा मोटा रही खीर पूरी वाला आटा वाला वो पूरी रहती तब न पूरी डालती चिट्टी वाला का रहते वही में आटा डाल हम चौक
1: एको बेर जब बाज लिए आटा आटा या मुंह से बुढ़िया जब बुझ गए तब अहाँ के बुझे
0: ৬০০ पैसा चल गए वही में हिसाब ले लिया यार भेल भेटल टक्का
1: हाँ भेट गए टक्का भेट गए केना के 600 टका असगरे पेट में खा लिया 600 टका के माछ में सनती है तो घर में माय खाती है बाबू खाती है सबटा बाल बच्चा खाती है हमू खाती है सब परिवार मिल के खाती है ना है असगरे केना के खा लिये केना के अट गए अहाँ के पेट में पेट से की बखारी छी
0: डगर से कटल छले रह तोल के पचबरिया भाग में वही ठीना चाहे तो हम मोटा बोक लिए कपाड़ बहुत दूर लिए हसियाल फसियाल लिए तब जत्ते खेना रहिए परदेश में हम ओने भर छोड़ दिलिए अपना टोल जाइए लिए ना तो खाली भाग ले तब जाकर माय के खोजे बहाना में चल गई चमचम अटा जत्ते जी जहाँ चले दुकानदार को छाप खा ले लिए पैसे घट गए ना तो और हम खेती
1: तो चल जाओ ना चल जा पैसा दे छी हम चल जा
0: केना करू ना
1: केना
0: अगो दुईटा पूरी दा दे ना हम चल जा छी पैसा दा दी 102 टका
1: देखो दुईटा पूरी दे छे देखो तो देबे न कर पूरी आ 200 टका देबा दुईटा पूरी देबे देखो मुंह के नीक लगे छे
0: ए हम ही आन लिए परदेश से छने जा हम ले न देबा
1: हां सनेश कहो आटा का जे नाम लेबे ना तब बुझबे यहां केना है छी
0: आटा आटे के न पूरी बने छे ओइतना नै दल के पका के त आटे नै इतना
1: बने लिया आ बाबू सब के बाबू सब कहै छै एकरा ये आटा न के नाम नै लियो बुढ़िया बुढ़वा सुन जते बुढ़वा बुढ़िया के कान कते खोर छे
0: आटा के नाम के न लेबे त कति मैं माइट के पूरी बनबै छै
1: एगो बाबू सब
0: आ देबे कि नै दे से कहू
1: नै दब नै दब कान पकड़ के उठू बैठू थूक चाटू जाय दिन सब चमचमडा नै देबे नै जेबे तब त देब खायलो नै त खेना यहाँ के बंद
0: ई वाला ई कोन फसाद में पड़ गेल ये हम कान गेल ये हम जुलुम ये एकटा सब कहू सा
1: कथी ये
0: तखनी से कहलिए हिसाब लो हिसाब दिलू की खेलिए की सब खेलिए से सब कहू तो सेहो कह दिलू कमीशन वाला बात छले सेहो कह दिलू सब चीज पूछ ले लिया तैयो कह खाय ला नहीं भेटत ई कौन बात भले हमरा से कहू तो
1: अहाँ के की कहना छी कान पकड़ के उठू दोस्त देव बैठू तकर बाद हम डिसीजन लेबे जे खाय ला देब कि नहीं देब
0: एक और दिन दया ममता नहीं लगे है जो हमारा सुनक लोग के कहे कान पकड़ के उठू बटू आ कल के ना तो गप चल जते सौंसे टोल तब केन मन लागे ना
1: ककरा जब अहाँ के कहाँ कहेलो हमरा नहिरा के गप के पतियात सब अहाँ के बुझना या जे अहाँ केहन छी से
0: नहिरा के गप नहीं कहलू अहाँ कहै छी हमरा कान पकड़ के उठक बैठक करू
1: हाँ तो ठीके तो कहै छी अखनी अंगना में छी के देखे लावे छै
0: हाँ तो हमहू ठीके कहै छी अखनी खाय ला नहीं देबे ना तो खाला तो हम कदम ना जाके खाइए लबे ठकबे ल चाहे ओकरा फरेबिए बवाल चल जे
1: जा ना मुया नोच ल अधिक ले देख सटले रह दे छ खाइल
0: लेकिन लेकिन
1: कथि लेकिन लेकिन करै छिए
0: कवम चतुराल गेल लिए
1: हां चतुराल गेल लिए बदल हेबे ना करै छै आ बात करै छै केना
0: गोर लगा टका के कमीशन ख्याल ल गेल चेक कह देबे आ सनेश म अब पूरी नै देलके आटे छान के दे देलके
1: कोई ना विश्वास करो तो हाँ जाओ ना हमरा धमकी नहीं दियो धमकी देना से हम डरे वाली नहीं चाहिए जे कहलू से करू थूक राखू चाटू कान पकड़ के उठू बैठू
0: हम नहीं करू
1: नहीं करबे तो नहीं देब खाए लो
0: ठीक है तो हम इतना बीच अंगने में सुत रही छी
1: बीच अंगना में सुतू की बीच द्वार पर सुतू की डेरिया पर सुतू की जागले रहू से हमरा कोई मतलब नहीं छी
0: ठीक है
1: अपनी को बुढ़वा बुढ़िया चंगना में भन्ना
0: और बना तो देखते ना
1: खूब देखते की ये भगवान कथे से अलग चमचम अडा से खा को देखी तुरंत केना खर लगले मन दे मरचाइये बुकनी नाक लग धा दी एक बेर में सुरक लेते सबटा कपार नहीं तन केना के हमरा कपार में बथाल रे केहन का सुर रहे छे ये तो खा के अलग होते चीज 600 टका 700 टका खा के लग रहा थोड़ी भूख लगल रहता है झगड़ा के खोज करे एना ना करबे तो झगड़ा लड़ाई घर में हेते विवाद हेते और हमरा मौका का फायदा उठेबे देखी केना खर रहे छे यो बुढ़वा बुढ़िया कत चल गए अंगना से एतिए तो ना देखती हमारे बेटा कत निक छे बाकी मच्छर कत काटना छे गाल पर मरियो दे छे कनी ने तो कहते कि सबटा खून पी लेते देखो बाबू सब भर हाथ खून लग गेले कते मच्छर लटकल छे केना के हमे तो झूल टांग बे हे भगवान केना के देखल जे मन तो छोड़ दी ने हम देखबे ने हमरा टेंशन हेते चल जाए छे हम घर में खा लेबे लेके भर पेट आ घर लगा के सुत रहबे भना एते कर माय बाप तो देखते भना भना मच्छर घिसी एते खूब के अब एक बेर जे छे ना भर दिन भर रात सांस के एक बेर हम घर खोलबे
0: ए कोना छे आय
1: बुझाय छे यले कोना छे
0: बाबा ए सुनै छे ना
1: नै छे नंगना म
0: अरे तोरी भला के कता गेले
1: हम क्या न गेलिए छे कतो जा छे कोई अंगना के लोग त हमरा कह के जा छे
0: ए ई कनी राख दह ना
1: कथी छियै मसे
0: लस भरी छियै
1: आगो बाबू सब ई रस भरिए खाइत खाइत सबटा डी डावर बेच लेते जहिना बुढ़वा बुढ़िया छै तहिना बुढ़वा बुढ़िया के काट कपार बेटा छै केना के घर परिवार में वृद्धि हेतै
0: ए बुढ़वा बुढ़िया के नाम लै छ त नै कोनो बात बेटा केना के अठ कपार छै
1: हैया देखती न अठ कपार नै छै त बड़ी नीक छै कपार सोझ छै देखती न कते छिटा के छिटा मच्छर बैठल छै अपनी कुत्ता बिलाई एतै त की करते एकरा
0: अरे तरी के क्या छियै
1: क्या छै से देखती न मुंह घर कमरा नै रहल गेलै त हम तना ओढ़ा देली
0: अरे तरी
1: मन जे टा घूर कर दी जे मच्छर भाग जेते घूर मने छे कर दिया कनी मरचा धा दिबो घूर
0: बारे उजकुन मा तू ता जुलुम करै छी रो 15 दिन ससुरार म रहले आइए ले आ शुरू कह दल के कत्ता गेल रहे
1: हम क्या न गेलिए से मैं रस भरी खेते आ ये की खेतीन ये दही खायत आ बेटा जतन चमचम आडा बढ़िया सिस्टम छे घर में आ हम की जो बाजे छे कजे परदेश वाली त महान नटीन छे
0: मैं टका यान लके कत्ता से दई चमचम आडा गेले
1: हमर भैया फोन करना रकल के 2000 टका देलियो हम गोर लगाए
0: कते खुशी भाग कहे छे हमर भैया दल के 2000 टका गोर लगाए ई बड़का तीर मार दल की
1: बाबू ते में खुशी का कौन बात छे दुखी का कौन बात छे दल के ते न कहे छिए
0: तोहर भैया का बरेन काम करे छ पहला है छ एकोर दिमाग
1: दिमाग नहीं छे त जमीन जथा छै एते सथी छै त के करा के राज काज ओकर चला दै छै यहाँ जाके चला दै छथिन
2: तै खातिर कहलिए हम
1: त कथि खातिर कहै छथिन
2: जब बुझै छै उजकुनमा अहिने छै जखनी टका देखै छै तखनी ओ मतलब केना के एकरा से लेबै टका घरो मे नहि देखै छै केना केना करै छै ओकरा हाथ के टका देलकै कथि ले जाय ई तम चमा डा गेलै
1: त की करते बाबू आप सबके गोर लागलकै त गोर लगाय त दिए पड़ै छै न मर मेजमान के
2: मर मेजमान के दिए पड़ै छै ओ बुझ गेलिए बात लेकिन वह है टका अखनी हमर अथी मे कथि कहै छै यांगी मे जे हमरा दे देतिए ट्रांसफर कै देतिए तऽ आइ ओ टका एना नहि ने खर्चा हेतिए आय कतऽ से कतऽ आइकाल्हि टका चलि जाइ छै
1: देखी देखी केहन के बाजे में करती मेचो पर मुँह
2: केना के मेच पड़ते
1: आय गोर लागते जमे लोक ससुरार आ टका दे पठेते समधि लो ई कतक नियम छियै आय समधियो के कहूँ गोर लगा दे छे लोग ई अपना ससुरार जतीन सबके गोर लागतीन 15-20 दिन महीना दिन 6 महीना रहतीन से नहीं हेतै।

0: जाबत तक तेल रहै छै गाड़ी मे ताबत तक गाड़ी चलै छै ना, चाहे जते दूर जा सकै छी।
1: चलै छै कि तहिना होइ छै?
0: हाँ तहिना, इएह सिस्टम छै हिनकर बेटा मे। जाबो एकरा गोजी मे टका रहलै ना बाबू, तब धुन चललै की चललै नहि चललै ओकर था नहि छै। आ जहाँ गोजी मे टका सठि गेलै आकि पटपटायल घर दिसन चलि गेलै।
1: अच्छा ला ला ला लावा खाय ला, लावा हम गोर हाथ धोके आबै छियै।
0: जा नहि छनि गोर हाथ धोय लऽ, हिनका तऽ देबै खाय ल। जो काम न करै छै सो हमरे नाम लगा दै
2: छै। पानि धा देलकै मुँह बके हमरे नाम लगा देलकै।
1: रे चुप कपर दरुआ, ओ तोरा देलको पानि कपार पर।
2: ऐसे बढ़िया तऽ काने पकड़ लेने रहती, सा नीक रहतियै। की कह देलकै, केना कह देलकै? एकटा ई कुत्ता दे अपने मने पानि पुजा देलकै, आ एकटा हमर घर के लोग छै, खुशामद करै छै तऽ नहि दै छै खाय लऽ।
1: रे चुपला चुपला,
2: धन्यवाद दै छियै कुत्ता जी के।
1: ला ला ला ला सटका ला धै।
0: बाबू कता गेल रहै कुत्ता, भनसा घर डुकल रहै।
1: हे भगवान, भनसा घर से की निकलतै? हम गेलियै कल पर आ ई तीन चारटा ओने से हुलकले दौड़ले चलि गेलै। जा एकरा स्नान कर, खूब बढ़िया से आब गंगा जल और छिटय।
0: हेतै बाबू, आब नहि कहथिन हम बुझ गेलियै।
1: हाँ ला कथी पकेने छह, कथी रिन्ह छ, लाव खाय ल।
0: की करबै बाबू, पूरी छै, तरकारी छै, खीर छै।
1: अरे तोरी के पूरी खीर तरकारी आय कोन स्पेशल रहै छै?
0: गर्मे गर्मे छै बाबू,
1: मर अट्टा तट्टा रहबे नहि करत, फेर ई कतऽ से चलि अयल आनि लेल।
0: हे भगवान, हमरा तऽ मुँह से बजा देलकै बाबू, नहि बुझलखिन ओहि दिना गाम से नहि आयल छलियै।
1: हे गाम से अटे लए के आयल सानले अथी अट्टा।
0: हे भगवान, के करोड़ से दिमाग लगेतै, छोड़ दै छियै। यावत न खासिन का मतलब छैन की उकटा उकटी से मतलब छै?
1: अच्छा ले आबै छियै, जे भेलै से भए गेलै आब। लेकिन हे आब जे जतऽ न तऽ पैसा तैसा एकरा हाथ के नहि कही दै लऽ, न तऽ फेर अहिना करतौ।
3: बेस्ट श्रोता मित्र, आजुक नम्रता के निर्धारित समय ठाम समाप्त भऽ गेल। आजुक कार्यक्रम सँ हम जीवछ,
1: हमे जिलेबिया,
4: आ हम सरिता विदा चाहे छी। नमस्कार, शुभ संध्या।
5: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज,
6: अब बीपी कोयराना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
7: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा, इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
7: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
6: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
5: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
7: संपर्क कैल जाए
6: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
7: फोन
6: 031-5370-76,
7: मोबाइल
6: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छ।
2: कथि छ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सबके श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में।

0: भऽ गेल छी। आँख के फोटो आ फिंगर प्रिंट के लेल कतौ बाहर नहि जाय पड़तौ।
1: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
2: एहिठाम विदेश जेबाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
1: विदेश जेबाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
2: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
1: संपर्क
2: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
1: फोन
2: 0131532575।
1: मोबाइल
2: 9801502475।
3: रंग बहार रंग बहार
4: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
3: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
4: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
3: घर रंगाओ, खुशी बनाओ,
4: उपहार जित्ने अवसर पाओ।
3: बर्जर पेंस।

0: Extreme energy drink.
1: एखन भरपा एफएम मा साँझ के सात बाजल
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भरपा एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाय वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि, ताहि एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ,
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए,
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए,
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए,
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ,
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए,
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ,
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए,
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: मिठाईहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-35-7776
4: मोबाइल
3: 98015-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
5: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता
6: चाहिए पानी चाहा पानी
7: क्याश फिरता लिनु भए त
8: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: sip on your extreme energy drink.
1: अपने साथ रहिए बोलो कुमार एफएम

0: राज विराजमै आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर रन्जु पोखरेल MBBS MD डर्माटोलोजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डाक्टर रंजु पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800111978।
2: सम्पूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, OPD, मेडिसिन सेवा,
4: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
3: होल बॉडी जांच, CT स्कैन, ICU, NICU, OT,
2: डिजिटल एक्सरे, AC, नॉन AC कैबिन के सुविधा है। संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
3: 031-530-7076।
2: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता 20% समकेश फिरता सहेले पनि चाह पनि
6: क्याश फिरता लिनु भए त
7: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जितने अवसर पाओ
1: बर्जर पेंट्स।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: एखन भोरकवा एफएम में रात के 8 बजल।

0: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
1: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
0: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
1: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
0: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाग पंजा सोफा सेट।
2: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
3: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत।
0: संगे मॉडल किचन खरात कार्विंग के व्यवस्था छे, पलाई, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
2: प्रोपराइटर शंभू सुथियार।
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
2: मोबाइल
0: 9807040070 आ 9868666270।
4: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
1: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा, अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
5: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा, टीचिंग अस्पताल काठमांडू, MD।
2: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
5: सेवा आ सुविधा सब,
2: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
1: गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँर दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
5: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
1: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
5: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब, छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
1: मोबाइल
5: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: अपने सभक संग अछि भोरुकवा FM 92.8 MHz।

0: तब भोलि बेलुकी 8:45 हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
1: एकखन भरकमा एफएम मा रात के 9 बजल राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
1: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9808।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।